मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, मैं हूँ आपका दोस्त और दोस्त आरजे अदनान और आप सुन रहे हो आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। कल मंडे ने सबकी एनर्जी का टेस्ट ले लिया था और आज है ट्यूसडे, यानी अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है, वाला रियलिटी चेक आ ही जाता है। सुबह की चाय रेडी है और आप भी अपना तैयार हो चुके होंगे घर के बाहर निकलने के लिए। वैसे मंगलवार और एक चीज बहुत स्पेशल बनाती है इस दिन को, वो है मंगलवार मतलब हनुमान जी का दिन। तो आज का दिन पॉजिटिविटी के नाम, मेहनत के नाम और एक फ्रेश शुरुआत के नाम। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या बस स्ट्रगल कर रहे हो कि अभी आप नींद से उठना है, तो याद रखिएगा हफ्ते का दूसरा दिन है, अब रिदम पकड़ने का टाइम आ चुका है। तो चलिए फिर म्यूजिक और मस्ती बातों के साथ शुरू करते हैं आज की सुबह। स्टे ट्यून क्योंकि अगले कुछ घंटे होने वाले हैं फुल एनर्जेटिक और आपका मूड फ्रेश करने वाले। गुड मॉर्निंग एंड स्टे ट्यून। ऑल इज

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: हर रोज हम फोन उठाते हैं, ऑर्डर डिलीवर ये नोटिफिकेशन आता है और बस दो सेकंड के लिए दरवाजा खोलते हैं, पर उस दरवाजे के बाहर जो खड़ा होता है उसकी भी एक कहानी होती है। एक डिलीवरी बॉय था अमन, सुबह 9 बजे घर से निकलता, रात 11 बजे तक गर्मी हो, बारिश हो या ट्रैफिक, फोन पर बस एक लाइन ब्लिंक करती है, योर ऑर्डर इज अराइविंग सून। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड पर पानी, कपड़े पूरे भीगे हुए, पर ऐप में टाइम चल रहा था। अमन बाइक साइड में रोककर 10 सेकंड के लिए खुद से बोला, बस यार अब ये लास्ट ऑर्डर, फिर घर चला जाऊंगा। पर मिडिल क्लास घरों में लास्ट ऑर्डर कभी लास्ट नहीं होता। उसने पार्सल डिलीवर किया, दरवाजा एक छोटी सी लड़की ने खोला, पिज्जा देखकर वो खुश हो गई और अंदर भाग गई। अमन मुड़ने ही वाला था तब उस लड़की की मम्मी बाहर आई और बोली, भैया आप पूरे भीग गए हो, चाय पियोगे? सच बताओ उस दिन अमन को चाय से ज्यादा ये लाइन पसंद आई। वो 2 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ में चाय, आंखों में थोड़ी थकान और दिल में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि कभी कभी लोग पैसे से नहीं इज्जत से थकान उतार देते हैं। तो अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर आए, सिर्फ पार्सल मत लीजिए, एक स्माइल भी दीजिए, उसे कम से कम पानी का तो पूछिए, क्योंकि उनके बैग में सिर्फ ऑर्डर नहीं होते, घर की जिम्मेदारियां भी होती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ। मॉनसून सीजन चालू है और मॉनसून में इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे रखे आपके, बड़ा सवाल होता है ना। आई एम मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। बारिश का मौसम, ठंडी हवा, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, मजा तो बहुत आता है। लेकिन इसी मौसम में सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और पेट के इन्फेक्शन भी काफी बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मॉनसून में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे रखे। तो सबसे पहली बात, घर का फ्रेश और गर्मा गर्म खाना ही खाए। बारिश के दिनों में बाहर का जो स्ट्रीट फूड होता है या फूड होते हैं वो थोड़ा खाने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में जो कीटाणु होते हैं उस पर बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरी बात, पानी जरूर पीजिएगा। बारिश में प्यास कम लगती है लेकिन बॉडी को हाइड्रेशन उतना ही जरूरी होता है, इस वजह से पानी पीते रहिएगा। तीसरी बात, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। अच्छी स्लीप हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। और हाँ, रोज थोड़ा सा वॉक या हल्की एक्सरसाइज भी कीजिएगा, बॉडी एक्टिव रहेगी तो इम्यूनिटी को भी सपोर्ट मिलेगा। सीजनल फूड और हरी सब्जियां अपनी डाइट में रखिएगा। अगर किसी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है हाथ साफ रखना। खाना खाने से पहले और बाहर से घर आने के बाद हाथ धोना एक छोटी सी आदत है लेकिन कई इन्फेक्शन से बचा सकती है। याद रखिएगा, इम्यूनिटी किसी एक टेबल से नहीं रोज की अच्छी आदतों से मजबूत होती है। तो समझे, ये बात याद रखिएगा, अपनी हेल्थ को वेल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।

बनकर झाड़ी एक तकरीर, अखबारों में छप गई तोता मैना की तस्वीर। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे फिर वही हुआ जो

0: समोन किसी से बात करो अक्सर कहा जाता है, लेकिन कितना इफेक्टिव है? You are listening MGM 90.8 FM and let's talk about mental health. अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगावकर मैम, HOD of MGM University's Psychology Department. So मैम, overthinking पर हम बात कर रहे हैं और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यार तुम डायरी लिखा करो या किसी से बात किया करो, इससे फर्क पड़ेगा, तुम्हारी overthinking कम होगी. तो क्या ये सच है, इस बारे में बताइए.
1: बिल्कुल कम होगा. तो जब हम लिखते हैं या हम बोलते हैं या हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम हमारा जो प्रोसेसिंग होता है ब्रेन का, फ्रॉम इमोशनल ब्रेन टू थिंकिंग ब्रेन, ये शिफ्ट करते हैं. जब हम नॉनस्टॉप है ना अंदर ही अंदर बोलते हैं, खाई जाती है कोई बात, तो हमारा वो इमोशनल ब्रेन काम करता होता है. और जैसे ही हमको लिखना है या शेयर करना है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होती है हमारी लैंग्वेज, ब्रेन के हिस्से, है ना. फिर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो थोड़ा थिंकिंग बेस्ड हो जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी बुरा लगे, कुछ लगे, तो या तो लिख लो या किसी से जाके बात कर लो. और हमारी ज़िंदगी में भरोसेमंद लोग होना हमारे आसपास बहुत ज़रूरी हो गया है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे आसपास ट्रस्टवर्दी पीपल हो, है ना, जो हमारा पर्सपेक्टिव को थोड़ा करेक्ट कर सके. जब हम कुछ शेयर कर रहे हों, हमको जज ना कर सके. तो मेरा ये सजेशन है सबसे कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत पावरफुल चीज़ है टू रेगुलेट आर नर्वस सिस्टम. तो प्लीज़ बिल्ड ट्रस्टवर्दी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शंस.
0: तो एग्जैक्टली मैम ने जो कहा, ये फॉलो कीजिएगा और आप डायरी भी लिख सकते हो. आपके माइंड के अंदर जो कुछ सवाल आ रहे हैं, जितने भवंडर मचे हैं ख्यालों के, वो आप नोट डाउन कीजिए या किसी से बात कीजिए और देखिए मन हल्का जरूर होगा और बेफिक्री के साथ जिंदगी एंजॉय करते रहिएगा. स्टे ट्यून्ड.

Good morning, Chhatrapati Sambhaji Nagar. You are listening to MGM 90.8 FM. All is और वक्त हो चुका है आज के गानों की फरमाइश पूरी करने का. सो आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो. बाय द वे, आज गाने की फरमाइश आई है रेणुका गौर. इनके

क्या बात है, रेणुका जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है, तो अब इनकी फरमाइश पूरी करना ही है। बाय द वे दोस्तों, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम तक पहुंचाइए और फिलहाल एंजॉय कीजिए आने वाला सुपर हिट गाना फरमाइश वाला ऑन MGM 90.8 FM।

मेरी शादी है डॉक्टर, मुझे वजन कम करना है, बस एक इंजेक्शन दीजिएगा। और एक इंजेक्शन से वजन भी कम होता है भाई, ये अभी मुझे पता चला। हर एक शॉर्टकट चीज है इस दुनिया में, किसी भी चीज का शॉर्टकट है, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्म के अंदर बड़ा नुकसान भी आपको करवा सकता है। लग्न ठरले, पटकन स्लिम व्हायचं, आई होण्यासाठी वजन कमी करायचंय, ऑफिस मध्ये चांगलं दिसायचंय, वजन कमी करायचंय, क्रशला इम्प्रेस करायचंय, वजन कमी करायचं, अशा वेगवेगळ्या कारणांसह डॉक्टरांकडे आजकाल पेशंट येत आहेत। और सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के जरिए हो, इस इंजेक्शन के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है। अब इस वजह से डॉक्टर लोगों के पास पेशेंट जाते हैं कि मुझे एक इंजेक्शन दीजिए और वजन मेरा घटाइए। डॉक्टर का कहना है कि इससे तो वजन घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, बट आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी वजन आपको कम करना है तो थोड़ी मेहनत करना लाजमी है। लेकिन मेहनत आज कौन करे, कौन सुबह उठ के जिम जाए, डाइट करे, खाना अवॉइड करे, इस वजह से बहुत सारे यूथ ना इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। हालांकि इंजेक्शन काम करता है, आने वाले वक्त में काम बिगाड़ भी सकता है। तो मेरा एक ही मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसे इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, बाद में जाकर पछताने से बेटर है आज थोड़ा मेहनत कीजिएगा वजन कम करने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिम लगाइए, डाइट प्लान कीजिए और 2-3 महीने में एकदम नेचुरल तरीके से अपना वजन घटाइएगा, कम करिएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के पास जो 10 पेशेंट्स आते हैं वजन कम करने के लिए, उसमें से 2-3 पेशेंट इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। भाई उससे बेटर है थोड़ी मेहनत करना, अपने आप जरा वजन कम होगा। बट क्या है, मेहनत का फल किसको चाहिए, सबको चाहिए शॉर्टकट का फल, बाकी आपकी जिम्मेदारी, जैसा आपको करना है। मेरा इतना ही मानना है कि मेहनत करके वजन घटाइएगा, इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़िएगा। और सुनते रहिएगा।

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM यूनिवर्सिटी म्हणजेच MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

कभी कभी देश का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ एक मेडल नहीं, एक मजबूत इरादा ही काफी होता है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आज एक बात ऐसी है, एक बेटी की है जिसके कदमों ने सिर्फ रास्ते नहीं नापे बल्कि एक इतिहास लिखा है। इंडिया की अल्ट्रा एंड्योरेंस रनर सूफिया सूफी ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और इस बार उनकी जर्नी शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और खत्म हुई कश्मीर में। लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा यह सफर 800 दिन में उन्होंने तय किया है रनिंग करते हुए। क्या बात यार, सच में काबिले तारीफ है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सोचिए दोस्तों, रोज 50 से 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ना, धूप हो, बारिश हो, थकान हो या दर्द हो, लेकिन कदम कभी नहीं रुकते थे। ये सिर्फ एक रन नहीं था, ये डिसिप्लिन की कहानी थी, ये हौसले की मिसाल थी। और ये साबित करता है कि जब सपने बड़े होते हैं तो रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। तो हमारी तरफ से सूफिया सूफी को दिल से सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम भी शुरू है और यहाँ पर भी अपनी बेटियां मेडल जीत रही है। कौन कौन से मेडल अभी इंडिया ने अपने नाम किया है वो भी बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने। लौटता हूँ, स्टे ट्यून्ड।

है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो।

जब तिरंगा सबसे ऊपर होता है और नेशनल एंथम बजता है तब सिर्फ कोई मेडल नहीं जीता जाता, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता जाता है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आज पूरा देश गर्व से भर गया है क्योंकि मेरा भाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में विमेन 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है यार, बहुत बहुत बधाई हो। और ये सिर्फ एक गोल्ड नहीं है, ये मीरा बाई की कॉमनवेल्थ गेम में हैट्रिक है गोल्ड की। तीन कॉमनवेल्थ गेम्स और तीनों बार गोल्ड मेडल। मेडल के साथ ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। सबसे इमोशनल पल क्या था पता है? जब मेडल सेरेमनी में जनगण मन बसता है और मीरा बाई चानू की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं क्योंकि उस पल सिर्फ एक एथलीट नहीं पूरा भारत अपनी जीत महसूस कर रहा होता है। ये मेडल हमें याद दिलाता है कि सक्सेस सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। सो एमजीएम रेडियो की तरफ से मीराबाई चानू को दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है, इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, इंडिया जीतने के लिए खेलता है। और याद रखिए, जब किसी इंडियन खिलाड़ी के गले में ऐसा गोल्ड मेडल दिखता है ना, तब चमकता सिर्फ मेडल नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना चमकता है। जय हिंद एंड बहुत बहुत बधाई हो। लौटूंगा कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।

फिलहाल मौसम में बारिश शुरू है और बहुत होगा ना, तो कहीं ना कहीं जाने का, एंजॉय करने का, ट्रेकिंग करने का प्लान तो होगा ही, आपका भी है ना, जानता हूं ना। हेलो, माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और क्या है ना, आप ऐसे बहुत उत्साह के साथ, एंजॉयमेंट के साथ कहीं ट्रेकिंग पर जाते हैं, वाटरफॉल देखने जाते हैं, पानी में जाते हैं और मस्त फोटो वगैरह क्लिक करने का कोशिश करते हो ना भाई, सबके यही प्लान होते हैं। और आजकल आपने बहुत सारे न्यूज़ देखी होगी अलग अलग टूरिस्ट प्लेस के ऊपर ना, तो स्पेशली वाटरफॉल के नीचे बच्चों की ना तो गिर के मौत हो गई है। ये क्यों हो रहा है पता है क्या? आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा अपने यहाँ पर भी, जितने टूरिस्ट प्लेस है ना, तो वहाँ पर भी जो मुश्किल जगहें होती है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर जाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और उन्हें लगता है कि यार मैंने तो कितना ही बेहतरीन काम किया। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आपका पैर फिसल जाए तो आप सीधे नीचे गिर जाओगे या फिर किसी पानी में बह जाओगे। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आई नो ये बातें आपको आपके पेरेंट्स भी समझाते होंगे, सब लोग समझाते हैं, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं लेते। जब कभी आप कहीं घूमने जाते हो तो ऐसे मुश्किल जगहों पर आप अक्सर जाते हो, तो बी सेफ ब्रो। एक तस्वीर के चक्कर में आप खुद तस्वीर में आ जाओगे, तो खुद का ख्याल रखिएगा। और मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस एक दिल से बात कहनी थी, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 साल पहले की बात है। मेरा भी एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था मेरा, स्कूल फ्रेंड, उसकी भी मौत ना तो ऐसी हो गई थी। एक वाटरफॉल देखने गया था और वहाँ पर थोड़ा 19-20 हो गया, बहकर चला गया। उसकी बॉडी भी हमें 3 से 4 दिन के बाद मिली थी। जब अपना बहुत नज़दीकी कोई चला जाता है ना एक हादसे की वजह से, तो वो तकलीफ़ क्या होती है वो समझ में आती है। तो वो तकलीफ़ आप और आपके दोस्त ना झेल पाए, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। जाइए ट्रेकिंग कीजिए, घूमने जाइए, वाटरफॉल देखिए, लेकिन सेफ तरीके से। एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, तो बी सेफ ब्रो। एक बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते मैं समझा रहा हूँ, तो बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने झेली है लाइफ में, कुछ देखा है मैंने अपनों को जाते हुए इस हादसे में, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो। बस आपकी फिक्र है, बाकी कुछ नहीं। सो प्लीज़ दरख्वास्त है आपसे, याद रखिए एंड बाकी सुनते रहिए।

0: ये सो कॉल्ड आशिक प्रजाति, जी हाँ मैं आशिक प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी एरिया में शुरू हो जाते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ प्यार का दुश्मन नहीं हूँ और मैं तैयब अली भी नहीं हूँ।
1: तैयब अली प्यार का दुश्मन,
0: बट उन कपल्स का मुझे बहुत गुस्सा आता है जो पब्लिक प्लेस के ऊपर सरेआम शुरू हो जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। एक ऐसा ही केस सामने आया अपने बीबी का मकबरा, अपना टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ पर फैमिलीज आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो कई कई कपल्स बसून झाड़ा खाली प्रेम कर देते। अरे भावनो बहिनो, झाड़ा वर प्रेम करा, झाड़ा खाली बसून प्रेम करू नका, पण हे ना कळतच नाहीये। आणि फक्त आपलं बीबी का मकबराच नाही, तुम्ही आपल्या शहरातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी जर गेलात ना, तर तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळणार आहे। सो आप सिद्धार्थ गार्डन में जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे नजारा मिलेगा। बामू यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड में जंगल है ना, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल्स आपको दिखाई देंगे। पता नहीं ऐसी क्या गर्मी होती है जो कि पब्लिक प्लेस पर ही उनकी निकलती है। भाई किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे। और ऐसे कुछ कपल्स पकड़े गए थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह तो कुछ जो कुछ होगा वो होगा। बट मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक प्लेस पब्लिक की होती है, वहाँ पर आपके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने की प्लेस नहीं होती। तो इतनी बात तो समझिएगा। स्टेट you wouldn't.

लाइट्स कैमरा और बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अपडेट। हेलो माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिस्टिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सबसे पहली बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। फिल्म है रामायणा। रणबीर कपूर की ये एक स्पेशल फिल्म है और इसका स्पेशल लॉन्च यूएसए में होने जा रहा है और वहां पर ये लोग पहुंच गए हैं। ये पहली बार है जब इतने बड़े स्केल पर किसी इंडियन मैथोलॉजिकल फिल्म को कॉमिक कॉन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि यहां से फिल्म का नया लुक और एक्साइटिंग अपडेट सामने आने वाले हैं। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉलीवुड का 2026 का सफर काफी जबरदस्त हो रहा है। बड़े बैनर्स और नए कॉन्सेप्ट की वजह से इंडस्ट्री ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। एक्शन, कॉमेडी और फीमेल लीड फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट बताती है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, तो सिंपल बात ऐसी है, ये बॉलीवुड का पर्दा इस वक्त फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी और ग्रैंड सिनेमा से भरा हुआ है। बाय द वे, आप फिलहाल कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो जरा बताइए मुझे DMKJ का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और मुझे तो फिलहाल इंतजार है रामायण का। आपको कौन सी फिल्म का इंतजार है बताइए जरा DMKJ का इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर। एंड स्टे ट्यून।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या वैसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 और 7017080546. MGM University in Sikkim, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM यूनिवर्सिटी म्हणजेच MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि 1 वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं।
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM यूनिवर्सिटी म्हणजेच MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: Cook and Bake with Rajashree Agrawal, only on MGM 90.8 FM. साथ है तो बात है.
3: हेलो एवरीवन, कुक एंड बेक इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर एट श्री कुकिंग एंड बेकिंग क्लास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. तो देखो, चातुर्मास जो है ये शुरू हो गया है ना. तो चातुर्मास में ऐसे होता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए. तो इस सबके पीछे ना कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है. इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने जैसे मौसम है, तबीयत होता है हमारा, उसके बाद में जैसे हमारी पाचन शक्ति होती है, इन सभी के बारे में सोचकर उन्होंने ये सारे जो नियम है ये लगाए हुए हैं, जिसे हमने फॉलो करना चाहिए. क्योंकि इसके पीछे ना साइंटिफिक रीजन भी होते हैं. जैसे बारिश के मौसम में हवा में जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है. इससे क्या होता है ना कि हमारी पाचन शक्ति जो है वो कम हो जाती है, और हमें जो वायरल इन्फेक्शंस है ये होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो इसके लिए ये सभी चीज़ें जो है ये लगाई हुई है. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमने चातुर्मास शुरू हो गया है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ ही में हम कुछ रेसिपीज देखेंगे, चातुर्मास स्पेशल रेसिपीज. ओके, सो देखो, चातुर्मास में ऐसा है कि सिर्फ उपवास करना, ऐसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, सभी चीजें होती है, हमारे उपवास भी होते हैं. तो हमने हमारे हिसाब से डाइट जो है वो हमने डिसाइड करना चाहिए. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी तबीयत कैसी है ना. किसी का जो मतलब जो भी किसी को डाइजेस्ट करने की क्षमता अच्छी होती है, किसी की या किसी की नहीं होती है. हर एक का बॉडी जो है वो अलग अलग होता है. तो इस हिसाब से हमने क्या खाना, लेकिन एक कॉमनली जो चीजें हैं जो हमने करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो देखो, सबसे पहले तो घर का खाना खाना चाहिए आपने, बाहर का खाना आपने अवॉइड करना चाहिए. ओके, अभी घर का भी जो खाओगे सो वो ताजा होना चाहिए, है ना. इन दिनों में आपने बासी खाना जो है वो अवॉइड करना है, आपने बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, घर का बना हुआ, फ्रेश बना हुआ. ओके, इवन सुबह का शाम में या शाम का सुबह भी नहीं खाना है आपने, अभी बनाया बस अभी खा लिया, है ना. खाने को भी आपने बनने की 45 मिनट्स के अंदर खा लेना चाहिए. उससे ज्यादा भी अगर खाना रहता है तो वो भी बासी माना जाता है, ठीक है. तो इस तरह से अपने खाना बनते ही 45 मिनट्स के बाद उसको खा लेना है, उससे पहले ही खा लेना है, ठीक है. गरम रहना चाहिए, है ना. ऐसे होता है कि देखो, हम मम्मी खाना बना रही है और तवे पे से जैसे पराठा उतरता है हम हमारी थाली में, तो इस तरह का खाना अगर आप खा सको ना एक टाइम भी, तो बिल्कुल आपने वही खाना चाहिए. अभी डाइट जो है ये आपको हैवी नहीं लेना है, मतलब बहुत तला हुआ, ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी, जिसमें बहुत ज्यादा मसालों का यूज किया हुआ है, तो ऐसा खाना आपको अवॉइड करना है. और घर का बना हुआ सादा खाना, जैसे दाल, चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, इस तरह का जो लाइट हो, है ना, जो हल्का हो, ऐसा खाना आपको खाना चाहिए. अभी सब्जियां जो है वो आपने कौन सी ज्यादा खानी चाहिए, है ना. तो देखो, दूधी आता है जिसको लौकी कहा जाता है, वो आप खा सकते हो. उसके बाद में पम्पकिन होता है, वो आप खा सकते हो. इसके बाद में जो तुराई आती है वो आप खा सकते हो, परवल आती है वो सब्जी आप खा सकते हो. तो इस तरह की सब्जियां जो है ये आपने इन दिनों खाना चाहिए. और स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूंगी ना, जब भी आप सब्जी खाओ तो आपने क्या करना है ना, जो मौसमी सब्जियां है अभी इस मौसम में जो आ रही है वो आपने ज्यादा से ज्यादा खा लेनी है. ओके, सो जो ये मौसम में नहीं मिलता है वो आपने नहीं खाना है. अगर कहीं पे आपको अवेलेबल हो भी रहा है वो भी आपको अवॉइड करना है. जो इस मौसम में मिल रहा है वही सब्जी आपको खानी है. सेम इसी तरह से फ्रूट्स का भी है कि जो फ्रूट्स आपको, सीजनल फ्रूट्स जो मिल रहे हैं वही आपने अभी खाना है. ओके, अभी आप अगर आपको कोई दे रहा है कि हम तरबूज देंगे आपको, तो बिल्कुल नहीं लेना है आपने, है ना. अभी तरबूज का मौसम ही नहीं है, तो आपने जो सीजनल फ्रूट्स है वही आपने खाने हैं. इसके बाद में घी आप लिमिट में खा सकते हो. ऐसे भी घी की हमको बॉडी को जरूरत होती है. घी जो है पूरे हमारे अंदर के जितने भी जॉइंट्स है सभी को ग्रीसिंग करने का अच्छे से काम करता है. सो लिमिट में आप खा सकते हो. देखो घी चलेगा, सिर्फ आपको ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा मसालों वाला जो खाना है वो आपने अवॉइड करना है. ओके, देखो डाइजेशन अच्छा होना चाहिए. डाइजेशन अच्छा होने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, कुछ चीजें हैं जिनका ज्यादा थोड़ा सा यूज कर सकते हो. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ज्यादा यानी लिमिट में ही करना है, बट वो आपको फिर हर चीज में डालना है. जैसे आप सब्जी में हल्दी तो डालते हो, साथ में जीरा का यूज बढ़ा दो, उसके बाद में धनिये का यूज बढ़ा दो, हींग का यूज ज्यादा करो. तो ये जो चीजें है ना, ये क्या करेंगी ना, आपका डाइजेशन जो है वो आसान करेगी, है ना. सो आपको क्या यूज करना है ज्यादा इस मौसम में, आपको देखो अदरक ज्यादा यूज करना है, हल्दी का यूज ज्यादा करना है, उसके बाद में जीरा का यूज करना है, धनिया यूज करना है, हींग जो आता है उसे आपको ज्यादा यूज करना है. तो इन सब चीजों की वजह से जो भी हम खा रहे हैं ना, तो वो हमें अच्छा डाइजेशन होने के लिए सपोर्ट करेगी. ओके, सो ये चीजों का यूज जो है ये आपको ज्यादा करना है. दूसरी चीज आपको क्या करना है कि पानी जो भी आ रहा है घर में, या तो उसे फिल्टर करके पियो, या तो उसे थोड़ा सा गर्म करके और फिर उसको गुनगुना करके आपको पीना है. ओके, जितना आप गुनगुना पानी ज्यादा पियोगे आपके लिए अच्छा होगा. अभी जितना भी आप जो भी चीजें आप खा रहे हो तो आपने ही अच्छे से चबाकर खाना है, है ना, फास्ट में नहीं खा लेना है, खाने को अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना है. ओके, देखो बासी टोटल अवॉइड करना है, अगर बच भी जाता है आप उसे मत खाइए. ओके, इसके बाद में देखो फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारे फास्ट फूड, वो भी चाट, ये सब आपको अवॉइड करना है, है ना. देखो जिसमें मतलब जो भी चीजें खुले पे है वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है. जैसे बाहर जो भी चाट मिलता है खुले पे, वो आपने टोटल अवॉइड करना है, आपने बिल्कुल नहीं लेना है. जिसमें चीनी ज्यादा हो ऐसे आइटम्स भी आपको स्किप करने हैं. ओके, बिल्कुल नहीं खाना है आपने. उसके बाद में मैदे से बनी हुई चीजें, मैदा क्या होता है ना, डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम देता है. सो आपने मैदे से बनी हुई चीजें जो है ये जाके पेट में हमारे चिपक जाता है और जल्दी से निकलता नहीं है बाहर. सो इसके लिए मैदे से बनी हुई चीजें भी आपने अवॉइड करना है. कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीना है, कितना भी मन किया तब भी आइसक्रीम आपने अभी नहीं खाना है. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि देखो दही तो खाना चाहिए ऐसे हम बोलते हैं, पर रात के समय दही खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अभी, है ना. सो वो पचने के लिए थोड़ा सा जड़ हो जाता है अगर आप रात के समय खाते हो तो. सो इसके लिए रात के समय छाछ हो गया, दही, ये चीजें आपने अभी नहीं खानी है, ठीक है. ट्रेडिशनली देखा जाओ ना तो हमारे जो पूर्वज थे ना वो क्या कहते थे कि श्रावण लग गया तो अभी आपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आता है ना, सो वो आपने अवॉइड करना है, मेथी, पालक, जो भी लीफी वेजिटेबल्स है. उसके बाद में जैसे भाद्रपद लग गया तो आपने अभी दही नहीं खाना है इस मंथ. अश्विन लग गया सो आपने अभी दूध नहीं खाना है. कार्तिक लग गया तो आपने उड़द दाल नहीं खाना है. एक्चुअली इसके पीछे जो साइंस था या इसके पीछे का जो भी उनका इंटेंशन था, ये ऐसे था कि ये चीजें जो है ये इजीली जैसे दूषित हो जाती है ना इस मौसम में, और डाइजेस्ट करने के लिए ये हार्ड होती है. सो हमारा डाइजेशन आसान हो जाए और जैसे कोई भी वायरस है वो हमें इन्फेक्ट ना करे, इसके पीछे का इंटेंशन ये था. सो ट्रेडिशनल हम जो बातें सुनते हैं ना, तो कभी कभी उसके पीछे का साइंस जानकर वो भी हमने करना चाहिए कि ऐसे क्यों कहा है पूर्वजों ने. ओके, सो इस तरह की चीजें भी होती है. सबसे इम्पोर्टेंट आपने टाइमिंग पर खाना खाना है. मान लो आप शाम का खाना जितना जल्दी खा सको उतना जल्दी खाने की कोशिश करिए आप. सो इससे होगा क्या ना कि जब तक आप सो रहे हो तब तक वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, है ना. 3-4 घंटे पहले अगर आप अच्छे से खाना खा लेते हो सोने से, सो वो आपके सोने तक अच्छे से डाइजेस्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है. डेली आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, और जब भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आ रहे हो सो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, है ना. जैसे लीफी वेजिटेबल्स भी है एक तो अवॉइड करिए, और खा भी रहे हो सो इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लो जब तक कि इसके अंदर से मिट्टी निकल रही है ना. आपको उसको पूरी तरह से साफ करना है और फिर ही आपको उसे यूज करना है, ठीक है. देखो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है है अपनी किचन में, हाइजीन मेंटेन करना है, कहीं पे मक्खियाँ बिन बिन कर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, सो हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखिए. जो प्रॉपर चीज़ें हैं डाइजेस्ट के लिए, हल्की है, आसान है, वही खाना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको खाना तो है लेकिन वो भी लिमिट में, कोई भी चीज को आप एक्सेस नहीं करोगे, ठीक है. उसके बाद में आपको टाइम पर खाना है ना. तो देखो इस तरह से आप अपना डाइट जो है वो रखोगे. तो देखो चातुर्मास स्पेशल रेसिपीज में आज हम देखने वाले हैं कि कच्चे केले से बने हुए मलाई कोफ्ते. सो कच्चे केले आपको लेके आने हैं मार्केट से, और इसे आपको क्या करना है ना, उबाल लेना है और फिर छील लेना है, ठीक है. प्रिपरेशन जो है ये पहले बता देती हूँ. सो आप इसको छीलोगे और अच्छे से मैश कर लोगे. इसके बाद में उबले आलू ही लेना है आपको, आलू को भी उबाल लेना है अच्छे से, और उसे भी आपको छील कर मैश कर लेना है. तो देखो

0: केले ले लिए हमने, ठीक है, 3 से 4। उसके बाद में 2 से 3 ले लेना है आपको आलू। इसके बाद में हमें लगने वाला है कॉर्नफ्लोर, एक 3 से 4 बड़े चम्मच आपको लगेगा, टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद में आपको लगेगी हरे मिर्च कटी हुई, फाइनली चॉप्ड आपको लेना है 1 से 2, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो जिस तरह का तीखा आप पसंद करते हो। ओके, अगर आप चातुर्मास में अदरक खाते हो सो एक छोटा आधा इंच का टुकड़ा आपको ग्रेट करके लेना है। अदरक को क्या करोगे ना, अच्छे से धो लोगे, अदरक को पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद में उसके ऊपर का छिलका जो है वो आपको हटा लेना है पूरी तरह से, और फिर आपको उसको ग्रेट कर लेना है। उसके बाद में बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेना है आपको 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है नमक, काली मिर्च का पाउडर लोगे आप 1/2 टीस्पून। उसके बाद में जीरा पाउडर लेना है आपको 1/2 टीस्पून, और तलने के लिए घी या तेल, जिसमें भी आपको शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई करना है जो कोफ्ते हैं। अभी ये जो सामग्री थी ये हमने ऊपर कोफ्तों के ऊपर जो ऊपर का कवरिंग है उसके लिए मैंने आपको बताई है। अभी अगर आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहते हो, ओके, टोटली ऑप्शनल है, बस उसके भी कोफ्ते बना सकते हो जितना मैंने ऊपर की सामग्री आपको बताई है। लेकिन अगर आपको स्टफिंग करना है सो एक 10 से 12 आपने काजू ले लिए, एक 2 टेबलस्पून आपने उसमें डाल दिए किशमिश, ओके, 2 टेबलस्पून ले लेना है आपको कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, ठीक है, फ्रेश नारियल, जो आपने फोड़ा नारियल को उसकी पानी जो है वो आपने निकाल लेना है, जो नारियल है उसको आपने ग्रेट कर लेना है। सो इस तरह से स्टफिंग आपने रेडी कर लेना है। अभी आप कोफ्ते बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमने आलू को और केलों को उबाल लिया था, ओके, उसे अच्छे से मैश कर लिया था, ठीक है। अभी ऐसे होता है ना, कभी कभी इस मिश्रण को बहुत ज्यादा पानी हो जाता है इसके अंदर, मतलब मिश्रण जो है वो ढीला हो जाता है। सो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना होता है। सो कितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, मैंने तो आपको बोला कि 3 से 4 चम्मच आप कर दो, बट वो डिपेंड करेगा कि कितना लूज आपका मिश्रण है, ठीक है। सो केले और आलू जब आप मैश करते हो उसके बाद जिस तरह का आपका कंसिस्टेंसी है आटे का, उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर जो है आपको ऐड करना है, ओके। अभी आपको इसके अंदर डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो भी मसाले हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद में हरा धनिया और हरे मिर्च आपको डाल देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक मिश्रण आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद में जो स्टफिंग की सामग्री थी वो आपको सारी चीजें जो है ये अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में रख देनी है, जिसमें हमने काजू, किशमिश और कसा हुआ ताजा नारियल लिया था, ठीक है। अभी क्या करना है ना आपको, जो हमारा आलू और केले का जो मिश्रण है इसकी आपको एक लोई बना लेनी है, ठीक है। लोई बनाने के बाद में इसको कटोरी की तरह बनाओगे और जो स्टफिंग हमने बनाया है वो आपको इसके अंदर भर देना है, ठीक है। स्टफिंग भरने के बाद में उसको ऊपर से गोल जैसे बंद कर दोगे आप, और फिर गोल करके हाथ में इसका कोफ्ता जो है ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसे क्या करना है ना, शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन रखोगे, उसमें घी या तेल जो भी आप पसंद करते हो, या तो फिर आप बटर पे इसके अंदर डाल सकते हो। सो आपको वो पहले डाल देना है, पूरे पैन को अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है, और फिर जो कोफ्ते हमने बनाए हैं इसे डालकर अच्छे से सुनहरा होने तक, हर साइड से सुनहरे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे शैलो फ्राई कर लेना है। अगर आप पसंद करते हो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट अभी मत कीजिएगा, है ना, शैलो फ्राई ही आपको करने हैं। तो देखो इस तरह से हमने कोफ्ते जो है ये बनाकर रेडी कर लिए हैं। अभी इसकी बनानी है हमें ग्रेवी। सो ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या लगेगा ये हम पहले देखते हैं। इसके लिए लगेगा हमें नारियल का दूध जो है वो 2 कप। उसके बाद में 15 से 20 लगेंगे हमें यहाँ पे काजू, घी या बटर जो भी आप पसंद करते हो वो आपको लगेगा 2 टेबलस्पून, जीरा आपको लगेगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, हरे मिर्च आपको 2 से 3 लेना है, और हरे मिर्च को क्या करोगे ना, बीच में से उसको कट कर लेना है, ठीक है, बीच में से एक चीरा लगा लेना है। उसके बाद में ग्रेटेड अदरक आपको लेना है 1 टीस्पून, काले मिर्च का पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लेना है आपको 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लगेगा आपको 1 से 2 टीस्पून, इलायची का पाउडर लेना है 1/4 टीस्पून, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चाहिए, चीनी या गुड़ ये ऑप्शनल है, 1 से 1.5 टीस्पून, ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको कितना डालना है, ओके। और उसके बाद में बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। अभी देखो कोफ्ते हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, अभी ये जो ग्रेवी का सामान है इससे हमें ग्रेवी रेडी करना है। सो पहले क्या करना है, आपको कढ़ाई में घी या तेल डालना है, और जैसे ही ये घी या तेल जो भी आपने यूज करा है ये गर्म हो जाए, उसके बाद में आपको इसके अंदर डाल देना है जीरा, साबुत जीरा जो है वो आपको यूज करना है। जीरा जैसे ही चटकने लग जाए आपको इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक डाल देना है, और इसे एक आधा मिनट तक आपको इसे अच्छे से होने देना है, ठीक है। हरी मिर्च जो है अच्छे से होना चाहिए उसके अंदर। अभी काजू का पेस्ट डालना है आपको, और उसे आपको 2 से 3 मिनट तक सबसे लोवेस्ट फ्लेम पर आपको इसे भूनना है, 2 से 3 मिनट तक। याद रहे काजू का पेस्ट जब भी डालो गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई या मीडियम आपको नहीं करनी है, सबसे लोवेस्ट पे ही आपको रखना है, ओके। अब आपको मसाले ऐड करने हैं, जिसमें आपको ऐड करना है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाल देना है आपको इसके अंदर नमक, ठीक है। मसालों को भी एक 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेना है, ज्यादा नहीं भूनना है कि मसाले जल ही जाए, ओके। इसके बाद में जो नारियल का दूध है वो आपको डाल देना है। नारियल का दूध जब भी ऐड करो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक हाथ से नारियल का दूध डाल रहे हो तो दूसरे हाथ से इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। जब भी नारियल का दूध यूज करते हैं दूसरे हाथ से स्टरिंग जो है ये कंटिन्यूस ऑन रखना है, वरना क्या हो सकता है ना, नारियल का दूध जो है ये फट सकता है। सो कभी भी दूध ऐड कर रहे हो ग्रेवी में, सो एक हाथ को हमारे कंटिन्यूस चलाते रहना है। एंड में आपको इसके अंदर डाल देना है इलायची का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ या चीनी, ये टोटली ऑप्शनल है, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये आपको डालना है तो डालिए, अगर स्पाइसी पसंद करते हो थोड़ा सा तो नहीं भी डाला तब भी चलेगा। सो चीनी और गुड़ डाल देना है, गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। तो देखो ग्रेवी हमने बना ली है, उसके बाद में कोफ्ते जो है वो भी हमने रेडी कर लिए है। सो अब क्या करना है ना आपको, जब सर्व कर रहे हो, ठीक है, सो कोफ्ते जो बनाए हुए हैं ये अभी आपको नहीं डालना है जब हम इसे सर्व करने वाले हैं, परोसने से ठीक पहले आपको ग्रेवी में जो है वो कोफ्ते जो है वो डालना है, और ऊपर से हरा धनिया डालकर आपको सर्व करना है। और एक चीज आप क्या कर सकते हो ना, कि ग्रेवी को थोड़ा सा गर्म कर लिया परोसते समय, कोफ्ते प्लेट में रख दिए और उन कोफ्तों पर आपने ये ग्रेवी डाल दी और फिर आपने हरा धनिया डाल दिया। सो इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हो, या तो फिर सर्व करने से पहले जब आपने गर्म करी थोड़ी सी ग्रेवी तब आपने उसमें कोफ्ते डाल दिए। होता क्या है ना कि अगर आप थोड़ा पहले कोफ्ते इसके अंदर डाल देते हो तो वो कोफ्ते जो है ये इसके अंदर घुल जाते हैं, है ना, एज इट इज नहीं रहते वो, सो बॉल्स की तरह नहीं दिखेंगे, आपके कोफ्ते जो है वो घुल जाएंगे। इसके लिए आपको कोफ्ते जो है वो जब आप सर्व कर रहे हो तभी आपको ऐड करने हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि जब कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर की कुछ नोट है वो आपको बता देती हूँ एक बार, कि आपके आलू की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लगेगा, है ना। आप अपने हिसाब से कॉर्नफ्लोर की जो मात्रा है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। देखो जब भी ग्रेवी बना रहे हो हमेशा याद रहे कि आपने उसे धीमी आंच पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद में कोफ्ते पहले से बना कर रखने हैं, ग्रेवी अलग से बना के रखनी है, है ना, नहीं तो ग्रेवी रेडी होगी और कोफ्ते भी अभी डाल दिए उसमें, जब तक आप परोसोगे तब तक वो पूरे घुल जाएंगे उसमें, है ना। इस तरह से आपको ग्रेवी अलग बनानी है या कोफ्ते बनाने हैं अलग से, और जब आप सर्व करने वाले हो तब आपको उसके अंदर परोसते समय ग्रेवी में कोफ्ते जो है वो डालना है, इससे आपके कोफ्ते जो है वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद में ग्रेवी को थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, एंड में जब आपने गैस की फ्लेम बंद कर दी 1 से 2 टेबलस्पून आपने घर की ताजी मलाई जो होती है उसे फेंट कर ऐड करना है, ठीक है। अगर आप खाते हो तो बिल्कुल आप ऐड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ये, अगर आप इसमें फ्रेश मलाई जो है वो अगर ऐड करते हो तो क्रीमी और एकदम रिच टेस्ट आएगा उसका, ठीक है। सिर्फ याद रखना है आपको कि मलाई जब भी ऐड कर रहे हो या तो अमूल का जो बाहर वाला फ्रेश क्रीम आता है वो भी आप यूज कर सकते हो, और अगर आप घर की ताजी मलाई यूज कर रहे हो सो मलाई को आपको निकाल लेना है, मिक्सी में से अच्छे से चला लेना है ओके, और फिर आपको उसमें ऐड करना है ताकि इसका टेक्सचर जो है वो अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में आए। सो इसके लिए आपको याद रहे कि उसको फेंट के ही ऐड करना है, जैसी मलाई ली वैसे के वैसे आपको नहीं ऐड करनी है। सो यहाँ पे हमारी जो रेसिपी थी कच्चे केलों से बनाए हुए मलाई कोफ्ते विद ग्रेवी, सो ये बनकर रेडी है। आप इसे चपाती के साथ में सर्व कर सकते हो, पराठों के साथ में सर्व कर सकते हो, या तवा पराठा भी आप बना सकते हो, या तो फिर जो रोटी आती है उसके साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हो, नान बना सकते हो, कुलचे के साथ में भी ये अच्छी लगती है। तो आप जो भी पसंद करते हो उसके साथ में आप इसे सर्व कर सकते हो। दूसरी एक रेसिपी आप बना सकते हो मखाने से बनी हुई खीर ओके, ये भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप फास्ट कर रहे हो तो भी खा सकते हो, जिन्हें फास्ट नहीं है वो भी लोग इसे खा सकते हैं। तो लेना क्या है ना आपको, यहाँ पे 2 कप ले लेना है आपको मखाने। मार्केट में देखो किसी भी ड्राई फ्रूट के शॉप पर जो है मखाने आपको मिल जाएंगे, सो 2 से 3 कप आपको ले लेने हैं मखाने ठीक है। ये मखाने जो है ये 1 लीटर दूध के लिए है, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स है और आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसका प्रपोर्शन जो है वो डबल कर सकते हो। दूध आपने 1 लीटर की जगह पे 2 लीटर ले लेना है और मखाने आपने फिर 2 कप की जगह 4 कप डाल देना है। इसी तरह से सारी सामग्री जो है वो आप डबल करके ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। हम यहाँ पर 1 लीटर दूध की बना रहे हैं ठीक है। सो दूध ले लिया हमने 1 लीटर, मखाने ले लिए हमने 2 कप। इसके बाद में घी ले लेना है, जो ताजा घी रहेगा और देसी घी रहेगा वो ही आपको यूज करना है। सो 1 से 2 टेबल स्पून ले लेना है आपको यहाँ पर घी, अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आधा से पौना कप आपको ले लेना है यहाँ पर चीनी ठीक है। उसके बाद में बादाम लोगे आप 1-10 से 15, काजू ले लेने हैं आपको 10 से 15, पिस्ता ले लेने हैं आपको 10 से 15, उसके बाद में इलायची का पाउडर ले लेना है आपको 1/2 टीस्पून ठीक है। केसर की डंडिया ले लेनी है आपको 10 से 12, और लास्ट में गार्निशिंग के लिए आपको लगेगी कुछ रोज पेटल, सूखे हुए ड्राइड रोज पेटल्स आते हैं वो आपने ले लेने हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले एक पैन लेना है आपको और उसके अंदर आपको डाल देना है घी 1 से 1.5 टेबल स्पून ठीक है। जैसे ही आपने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया उसके बाद में आपको उसके अंदर ऐड कर देने हैं मखाने। मखानों को आपको सबसे लोवेस्ट फ्लेम पर, गैस की फ्लेम जो है सबसे कम पे रखनी है, और ओकेजनली चलाते हुए आपको इसे रोस्ट करना है। कब तक, जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाए अच्छे से। मखाने ना अच्छे से क्रिस्पी हो गए नहीं हो गए ये चेक करने के लिए आप एक चीज कर सकते हो। आपने करना क्या है, मखाने को बाहर निकालना है पैन से और हाथ से उसे प्रेस करना है ठीक है। अगर वो दब जाता है तो इसका मतलब वो अभी रोस्ट नहीं हुआ है। अगर मखाना दबाने के बाद में अगर चूरा बन जाता है उसका, सो मखाने जो है ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसे टेस्ट कर सकते हो कि आपके मखाने जो है ये अच्छे से भुने गए हैं नहीं भुने गए हैं। बस टिप एक ही है उसका कि गैस की फ्लेम आपको सबसे लोवेस्ट पे आपको रखनी है ठीक है। अभी मखाने जो है ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसको आपको एक प्लेट में निकालना है, अच्छे से थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ठीक है। मखाने जैसे ही ठंडे हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 कप मखाना अलग निकालना है और 1 कप आपको वैसे ही रहने देना है। 2 कप मखाने हमने लिए थे भूनने के लिए ठीक है, तो उसमें से आधे मखाने जो है ये हमने ले लिए एक अलग से इसमें, और आपको इसको क्या करना है ना, कूटन से हल्का सा दरदरा कूटना है। आप मिक्सी में भी कर सकते हो इसे, मोटा सा आप इसको अच्छे से पीस लो, इस तरह से आप मिक्सी में से भी इसे निकाल सकते हो। और आधे मखाने जो है वो आपको वैसे ही रखना है। अब दूध जैसे है उबल जाता है, 10 से 12 मिनट उबल, जैसे पहला उबाल आता है ना उसके बाद में उसको स्लो फ्लेम पर आपको 10 से 12 मिनट रहने देना है। थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में वो आना चाहिए। तो दूध जैसे ही थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है अब जो मखाने हैं ये आपको उसके अंदर ऐड कर देने हैं, और जो हमने थोड़ा सा दरदरा पीसा था मखानों को वो भी आपको पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है ना, पाउडर नहीं बोलेंगे उसको, हमने दरदरा सा कूटन बनाया था उसका, वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। देखो अभी जब मखाने आपने इसके अंदर डाल दिए तो इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से होने देना है कि जो मखाने वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो 8 से 10 मिनट तक आप इसे सबसे लोवेस्ट फ्लेम पर दूध में डला हुआ रहने दोगे। इसके बाद में आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालोगे आप इसके अंदर, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उसको आपको हल्का सा दरदरा पीसना है, वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इलायची का पाउडर है वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं। केसर की डंडिया क्या करना है आपको, 10 मिनट पहले इसे क्या करोगे ना, थोड़े से दूध में आपको इसको भिगो कर रखना है, इससे इसका कलर जो है ना वो अच्छे से आएगा, और फिर ये जो दूध का मिश्रण और केसर डंडियों का मिश्रण है ये आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, इसे अच्छे से मिक्स दे देना है, ठीक है। सभी चीजें डालने के बाद में फिर से इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गैस पर होने देना है, तब भी आपको गैस की फ्लेम जो है वो लोवेस्ट पे ही रखनी है, हाई पे आपको नहीं करना है, ठीक है। एक अच्छे से उबाल आने देना है आपको, और जैसे ही उबाल आता है गैस की फ्लेम आपको बंद कर देना है, ठीक है। अभी ये जो मखाना ड्राई फ्रूट खीर है ना, आप इसे गरम भी सर्व कर सकते हो या तो आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है ना। बहुत ज्यादा फ्रिज में आपको ठंडा नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पर ही नॉर्मल उसको कूल कर लो और फिर सर्व करो। सो अगर गरम पसंद करते हो तो गरम भी सर्व कर सकते हो, अगर ठंडा पसंद है तो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल उसे पूरी तरह से ठंडा होने दो, फिर भी सर्व करी तो भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो देखो चातुर्मास में इस तरह से आप दोनों भी रेसिपीज अच्छे से बना सकते हो, एक तो मखाना ड्राई फ्रूट खीर और दूसरा जो हमने कच्चे केले से मलाई कोफ्ते बनाए हैं, ठीक है। सो इस चातुर्मास में आप ये रेसिपीज जरूर ट्राई करना, और आपकी रेसिपीज कैसी बन रही है ये हमें जरूर बताना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: Cook and Bake with Rajashree Agrawal, only on MGM 90.8 FM.

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8। अब आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर आता है। पूरे दिन की भागदौड़, काम की जिम्मेदारियां और ट्रैफिक की थकान के बाद अब वक्त है खुद के लिए कुछ पल निकालने का। अगर आप घर की ओर जा रहे हैं, परिवार के साथ है या फिर कहीं सफर में हैं, तो बस मुस्कुराइए क्योंकि आपके शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। एक अच्छी शाम हमें यही याद दिलाती है कि हर दिन अपने साथ कुछ नया अनुभव लेकर आता है। जो अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रिया कहे और जो मन मुताबिक नहीं हुआ उसे यही छोड़ दीजिए।

0: पोनीड फिल्म साथ है तू बात है।
1: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
2: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग, सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7844।
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।
4: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
6: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वेल, जिंदगी में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कभी पढ़ाई का, कभी नौकरी का, तो कभी अपने अपनों का। ऐसे में लोग अपनी राय जरूर देते हैं और सलाह लेना भी अच्छी बात है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर फैसला सही निकला तो खुशी मिलेगी और अगर गलत हुआ तो उससे सीख भी आपको ही मिलेगी। इसलिए दूसरों की बात सुनिए, लेकिन अपने दिल और अपनी समझ पर भरोसा रखिए। याद रखिए, हर इंसान का सफर अलग होता है। जो रास्ता किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने फैसले लेने की हिम्मत रखिए। तो आज का छोटा सा मैसेज बस इतना है। दूसरों की सलाह सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए, क्योंकि जब फैसला अपना होता है तो मेहनत करने का हौसला भी दो गुना हो जाता है। चलिए अब इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं एक शानदार गाना। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन पर एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: If education is the right choice, it doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 937171-4254.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
3: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9.

0: मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से। बारिश का मौसम आते ही गर्मा गर्म पकौड़े, चाट, समोसे, सड़क किनारे मिलने वाला स्वादिष्ट खाना खाने का मन जरूर करता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के दिनों में हवा में नमी ज़्यादा होती है, जिससे खाने में जल्दी कीटाणु पनप जाते हैं। अगर बाहर का खाना साफ सफाई से न बन रहा हो तो पेट खराब होने, फूड पॉइजनिंग या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके घर का ताज़ा और गर्म खाना ही खाइए। अगर बाहर खाना पड़े तो ऐसी जगह चुनें जहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, साथ ही साफ पानी पिए और खाने से पहले बार बार हाथ धोते रहे। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों की खुशी देता है, लेकिन अच्छी सेहत लंबे समय तक आपका साथ निभाती है। छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो इस बरसात स्वाद का मजा भी लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। बिल्कुल इसी तरह से अब बस इसी प्यारी सी बात के साथ सुनते हैं आपका अगला पसंदीदा गाना। बने रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन पर MGM नाड़ी पॉनिड फिल्म। साथ है तो बात है।
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
3: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहाँ पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट MGMU.AC.IN और कॉल 9230877784।
4: झालं रे, मी MGM युनिव्हर्सिटी म्हणजेच MGM युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
5: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
5: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783889 वर, किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM University, तुमच्या यशाचा मार्ग।
6: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? जब दिल किसी से मिलने की बात करता है लेकिन सामने आते ही शब्द साथ छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जब वो सामने होते हैं तो बस मुस्कुरा कर रह जाते हैं। यही तो प्यार की मासूमियत है। दिल में ढेर सारी बातें होती है लेकिन उन्हें कहने की हिम्मत नहीं होती। कभी शर्म, कभी झिझक और कभी सामने वाले की मुस्कान ही हमें खामोश कर देती है। शायद यही एहसास हर किसी ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। किसी अपने से मिलने की खुशी और उसी पल दिल की तेज धड़कने, ये एहसास शब्दों से ज्यादा दिल समझता है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसा ही एक खूबसूरत गाना जिसमें प्यार की यही मीठी झिझक और दिल की बातें बहुत प्यारे अंदाज में महसूस होती है। उम्मीद है ये गाना आपको भी किसी खास की याद जरूर दिला देगा। तो सुनिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत एहसास का आनंद लीजिए सिर्फ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पर एनजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई बार मन में एक सवाल आता है, अगर आज महात्मा गांधी हमारे बीच होते तो क्या करते। शायद वो सबसे पहले लोगों से शांति, प्यार और आपसे सम्मान की बात करते। वो कहते कि किसी भी समस्या का हल गुस्से या नफरत से नहीं है बल्कि बातचीत और समझदारी से निकलता है। गांधी जी हमेशा सच, अहिंसा और ईमानदारी के रास्ते पर चले। हो सकता है कि आज भी वो हमें यही याद दिलाते कि बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम अपने व्यवहार में छोटी छोटी अच्छी बातें अपनाएं, दूसरों का सम्मान करें और अपने कर्तव्य को निभाएं तो समाज भी धीरे धीरे बेहतर बन सकता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की सोच एक जैसी हो, लेकिन एक बेहतर देश बनाने में हर नागरिक का छोटा सा योगदान भी मायने रखता है। इसी सोच के साथ आइए हम सब कोशिश करें कि अपने आसपास थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान और थोड़ी जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ाए। अब बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गाने की ओर। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हम अक्सर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी शब्द सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा, यानी देश के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही मिलकर देश चलाते हैं। इसमें हर नागरिक की आवाज़ और हर वोट की बराबर कीमत होती है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं है, इसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए। कानून का सम्मान करना, दूसरों की राय सुनना, आपसी भाईचारा बनाए रखना और सही जानकारी के आधार पर फैसले लेना, यही एक अच्छे नागरिक की पहचान है। अगर हम नफरत की जगह सम्मान, अफवाहों की जगह सच्चाई और झगड़े की जगह बातचीत को अपनाएं, तो हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। याद रखिए, एक मजबूत देश की नींव उसके जागरूक नागरिक होते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें और एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन पर MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कभी कभी ऐसा लगता है कि देश में बहुत सी चुनौतियां हैं, कई खबरें हमें चिंता में डाल देती है और मन में सवाल उठते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कोई भी मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हर चुनौती के बाद बदलाव आता है और धीरे धीरे हालात भी बेहतर होते हैं। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि हम उम्मीद न छोड़ें, एक दूसरे का साथ दें, जिम्मेदार नागरिक बने और अपने हिस्से का अच्छा काम करते रहे। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है तो पूरे देश पर उसका अच्छा असर पड़ता है। उम्मीद और भरोसा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, इसलिए अगर आज कुछ बातें हमें परेशान कर रही है तो ये भी याद रखिए कि अच्छे दिनों की शुरुआत भी छोटे छोटे पॉजिटिव कदमों से ही होती है। आइए हम सब मिलकर विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जब लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो बदलाव यकीनन ज़रूर आता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब समय है एक खूबसूरत गाने का, बस बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM यूनिवर्सिटी म्हणजेच MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM यूनिवर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing,

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की इस खूबसूरत शाम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के गाने, बातें और छोटे छोटे मैसेजेस आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारी बातें आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकी या आपको कुछ पल सुकून के मिले तो हमारा साथ सफल हो गया। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार और अपनों का ख्याल रखिए। जिंदगी में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। हर शाम की तरह ये शाम भी बीत जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कुछ प्यारी यादें आपके साथ रहेगी। फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नए गानों के साथ और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर

0: मेरी शादी है डॉक्टर, मुझे वजन कम करना है, बस एक इंजेक्शन दीजिएगा।
1: और एक इंजेक्शन से वजन भी कम होता है भाई, ये अभी मुझे पता चला। हर एक शॉर्टकट चीज है इस दुनिया में, किसी भी चीज का शॉर्टकट है, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्म के अंदर बड़ा नुकसान भी आपको करवा सकता है। लग्न ठरले, पटकन स्लिम व्हायचंय, आई होण्यासाठी वजन कमी करायचंय, ऑफिस मध्ये चांगलं दिसायचंय, वजन कमी करायचंय, क्रशला इम्प्रेस करायचंय, वजन कमी करायचं, अशा वेगवेगळ्या कारणांसह डॉक्टरांकडे आजकाल पेशंट येत आहेत। और सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर के जरिए हो, इस इंजेक्शन के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है। अब इस वजह से डॉक्टर लोगों के पास पेशेंट जाते हैं कि मुझे एक इंजेक्शन दीजिए और वजन मेरा घटाइए। डॉक्टर का कहना है कि इससे तो वजन घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, बट आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी वजन आपको कम करना है तो थोड़ी मेहनत करना लाजमी है, लेकिन मेहनत आज कौन करे, कौन सुबह उठ के जिम जाए, डाइट करे, खाना अवॉइड करे, इस वजह से बहुत सारे यूथ ना इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। हालांकि इंजेक्शन काम करता है, आने वाले वक्त में काम बिगाड़ भी सकता है। तो मेरा एक ही मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसे इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, बाद में जाकर पछताने से बेटर है आज थोड़ा मेहनत कीजिएगा वजन कम करने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिम लगाइए, डाइट प्लान कीजिए और 2-3 महीने में एकदम नेचुरल तरीके से अपना वजन घटाइएगा, कम करिएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के पास जो 10 पेशेंट्स आते हैं वजन कम करने के लिए, उसमें से 2-3 पेशेंट इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। भाई उससे बेटर है थोड़ी मेहनत करना, अपने आप जरा वजन कम होगा। बट क्या है, मेहनत का फल किसको चाहिए, सबको चाहिए शॉर्टकट का फल, बाकी आपकी जिम्मेदारी, जैसा आपको करना है। मेरा इतना ही मानना है कि मेहनत करके वजन घटाइएगा, इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़िएगा और सुनते रहिएगा।

0: कभी कभी देश का नाम रोशन करने के लिए सिर्फ एक मेडल नहीं, एक मजबूत इरादा ही काफी होता है। हेलो, माई सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आज एक बात ऐसी है, एक बेटी की है जिसके कदमों ने सिर्फ रास्ते नहीं नापे बल्कि एक इतिहास लिखा है। इंडिया की अल्ट्रा एंडोरेंस रनर सूफिया सूफी ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और इस बार उनकी जर्नी शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और खत्म हुई कश्मीर में। लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा यह सफर 800 दिन में उन्होंने तय किया है रनिंग करते हुए। क्या बात है यार, सच में काबिले तारीफ है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सोचिए दोस्तों, रोज 50 से 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ना, धूप हो, बारिश हो, थकान हो या दर्द हो, लेकिन कदम कभी नहीं रुकते थे। ये सिर्फ एक रन नहीं था, ये डिसिप्लिन की कहानी थी, ये हौसले की मिसाल थी और ये साबित करता है कि जब सपने बड़े होते हैं तो रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। तो हमारी तरफ से सूफिया सूफी को दिल से सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम भी शुरू है और यहाँ पर भी अपनी बेटियां मेडल जीत रही है। कौन कौन से मेडल अभी इंडिया ने अपने नाम किए वो भी बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आने वाले सुपर हिट गाने। लौटता हूं, स्टे ट्यून्ड।
1: Education is the right choice. It doesn't take long for time and destiny to change. That's why choose MGM University's Dr. G.Y. Patekar College of Computer Science and Information Technology. Exciting career-oriented courses like BCA, BSc Computer Science, BSc Animation, Digital Marketing, Artificial Intelligence and Machine Learning, Integrated MSc Data Science, MSc Information Technology, MSc Computer Science, Data Science and PG Diploma in Animation are waiting for you. Admissions are now open for 2026 and 27. Visit mgmu.ac.in or call 937171-4254.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
5: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 99.

जब तिरंगा सबसे ऊपर होता है और नेशनल एंथम बजता है तब सिर्फ कोई मेडल नहीं जीता जाता, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता जाता है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आज पूरा देश गर्व से भर गया है क्योंकि मेरा भाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में विमेंस 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। क्या बात है यार, बहुत बहुत बधाई हो। और ये सिर्फ एक गोल्ड नहीं है, ये मीरा बाई की कॉमनवेल्थ गेम में हैट्रिक है गोल्ड की। 3 कॉमनवेल्थ गेम्स और तीनों बार गोल्ड मेडल। मेडल के साथ ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। सबसे इमोशनल पल क्या था पता है? जब मेडल रेमनी में जनगण मन बसता है और मीरा बाई चानू की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं क्योंकि उस पल सिर्फ एक एथलीट नहीं पूरा भारत अपनी जीत महसूस कर रहा होता है। ये मेडल हमें याद दिलाता है कि सक्सेस सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। सो एमजीएम रेडियो की तरफ से मीराबाई चानू को दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है, इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, इंडिया जीतने के लिए खेलता है। और याद रखिए, जब किसी इंडियन खिलाड़ी के गले में ऐसा गोल्ड मेडल दिखता है ना, तब चमकता सिर्फ मेडल नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना चमकता है। जय हिंद एंड बहुत बहुत बधाई हो। लौटूंगा कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM

फिलहाल मौसम में बारिश शुरू है और बहुत तो कहना तो कहीं ना कहीं जाने का, एंजॉय करने का, ट्रेकिंग करने का प्लान तो होगा ही, आपका भी है ना, जानता हूं ना। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और क्या है ना, आप ऐसे बहुत उत्साह के साथ, एंजॉयमेंट के साथ कहीं ट्रेकिंग पर जाते हैं, वाटरफॉल देखने जाते हैं, पानी में जाते हैं और मस्त फोटो वगैरह क्लिक करने का कोशिश करते हो ना भाई, सबके यही प्लान होते हैं। और आजकल आपने बहुत सारे न्यूज़ देखी होगी अलग अलग टूरिस्ट प्लेस के ऊपर ना, तो स्पेशली वाटरफॉल के नीचे बच्चों की ना तो गिर के मौत हो गई है। ये क्यों हो रहा है पता है क्या? आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा अपने यहाँ पर भी, जितने टूरिस्ट प्लेस है ना, तो वहाँ पर भी जो मुश्किल जगह होती है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पर जाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और उन्हें लगता है कि यार मैंने तो कितना ही बेहतरीन काम किया। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आपका पैर फिसल जाए तो आप सीधे नीचे गिर जाओगे या फिर किसी पानी में बह जाओगे। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, आई नो ये बातें आपको आपके पेरेंट्स भी समझाते होंगे, सब लोग समझाते हैं, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं लेते। जब कभी आप कहीं घूमने जाते हो तो ऐसे मुश्किल जगह पर आप अक्सर जाते हो तो बी सेफ ब्रो। एक तस्वीर के चक्कर में आप खुद तस्वीर में आ जाओगे, तो खुद का ख्याल रखिएगा। और मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस एक दिल से बात कहनी थी, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 साल पहले की बात है। मेरा भी एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था मेरा, स्कूल फ्रेंड, उसकी भी मौत ना तो ऐसी हो गई थी। एक वाटरफॉल देखने गया था और वहाँ पर थोड़ा 19-20 हो गया, बहकर चला गया। उसकी बॉडी भी हमें 3 से 4 दिन के बाद मिली थी। जब अपना बहुत नज़दीकी कोई चला जाता है ना एक हादसे की वजह से, तो वो तकलीफ़ क्या होती है वो समझ में आती है। तो वो तकलीफ़ आप और आपके दोस्त ना झेल पाए, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। जाइए, ट्रेकिंग कीजिए, घूमने जाइए, वाटरफॉल देखिए, लेकिन सेफ तरीके से। एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, तो बी सेफ ब्रो। एक बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते मैं समझा रहा हूँ, तो बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने झेली है लाइफ में, कुछ देखा है मैंने अपनों को जाते हुए इस हादसे में, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। वो बस आपकी फिक्र है, बाकी कुछ नहीं। सो प्लीज़ दरख्वास्त है आपसे, याद रखिए एंड बाकी सुनते रहिए।

0: ये सो कॉल्ड आशिक प्रजाति, जी हाँ मैं आशिक प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी एरिया में शुरू हो जाते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ प्यार का दुश्मन नहीं हूँ और मैं तैयब अली भी नहीं हूँ।
1: तैयब अली प्यार का दुश्मन,
0: बट उन कपल्स का मुझे बहुत गुस्सा आता है जो पब्लिक प्लेस के ऊपर सरेआम शुरू हो जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। एक ऐसा ही केस सामने आया अपने बीबी का मकबरा, अपना टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ पर फैमिलीज आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो कई कई कपल्स बसून झाड़ा खाली प्रेम करता है। अरे भावनो बहिनो, झाड़ावर प्रेम करा, झाड़ा खाली बसून प्रेम करू नका, पण हे ना कळतच नाहीये। आणि फक्त आपलं बीबी का मकबराच नाही, तुम्ही आपल्या शहरातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी जर गेलात ना, तर तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळणार आहे। सो आप सिद्धार्थ गार्डन में जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे नजारा मिलेगा। बामू यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड में जंगल है ना, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल्स आपको दिखाई देंगे। पता नहीं ऐसी क्या गर्मी होती है जो कि पब्लिक प्लेस पर ही उनकी निकलती है। भाई किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे। और ऐसे कुछ कपल्स पकड़े गए थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह तो कुछ जो कुछ होगा वो होगा। बट मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक प्लेस पब्लिक की होती है, वहाँ पर आपके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने की प्लेस नहीं होती, तो इतनी बात तो समझिएगा। स्टेडियम

लाइट्स कैमरा और बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अपडेट। हेलो माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिस्टिंग एमजीएम 90.8 एफएम। सबसे पहली बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। फिल्म है रामायण, रणबीर कपूर की। ये एक स्पेशल फिल्म है और इसका स्पेशल लॉन्च यूएसए में होने जा रहा है और वहां पर ये लोग पहुंच गए हैं। ये पहली बार है जब इतने बड़े स्केल पर किसी इंडियन मैथोलॉजिकल फिल्म को कॉमिक कॉन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि यहां से फिल्म का नया लुक और एक्साइटिंग अपडेट सामने आने वाले हैं। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉलीवुड का 2026 का सफर काफी जबरदस्त हो रहा है। बड़े बैनर्स और नए कॉन्सेप्ट की वजह से इंडस्ट्री ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। एक्शन, कॉमेडी और फीमेल लीड फिल्म को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट बताती है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, तो सिंपल बात है इसलिए बॉलीवुड का पर्दा इस वक्त फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी और ग्रैंड सिनेमा से भरा हुआ है। बाय द वे, आप फिलहाल कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो जरा बताइए मुझे DMKJ का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और मुझे तो फिलहाल इंतजार है रामायण का। आपको कौन सी फिल्म का इंतजार है बताइए जरा DMKJ का इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर। एंड स्टे ट्यून्ड।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
2: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM यूनिवर्सिटी म्हणजेच MGM यूनिवर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783899 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: तुझा अजूनही डिसाइड झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला ऍडमिशन घेणार आहे।
3: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।
5: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

देखने दो।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।